सुप्रभात, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की तिथि 1, तदनुसार दिनांक 22 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 43 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है।

0: है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है आम मनुष्य और महापुरुष।
3: आम मनुष्य व महापुरुष में एक अंतर होता है कि महापुरुष अपने जीवन में घटित घटनाओं व छोटी छोटी बातों से सबक लेकर अपना जीवन सुधारते रहते हैं। एक बार जो भूल हो जाए उसे वे दोबारा करने की गलती नहीं करते। इस प्रकार निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया द्वारा वे आम पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन ऐसे ही घटनाओं से भरा हुआ है। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करते समय एक बार गांधी जी को ऐसा आभास हुआ कि कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च कर

0: रहे हैं। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपने प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दिया तथा छोटे से छोटे खर्च भी, बस का किराया, अखबार का खर्च, डाक खर्च, चाय पान का खर्च इत्यादि नोट करने लगे तथा रात्रि को सोने से पहले इसे वे एक खाते में दर्ज करते। इस प्रकार वे अपने गैर जरूरी खर्च पर नियंत्रण पाने में सफल हो गए। उनकी ये आदत आजीवन बनी रही तथा इसी के फलस्वरूप बड़े बड़े आंदोलनों के संचालन के समय भी वे जहां लाखों रुपए खर्च का हिसाब किताब रखना पड़ता था, आय व्यय का समुचित संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहते थे। मित व्ययिता एक महान गुण है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए अति आवश्यक। तेते पांव पसारिये जेती लंबी सौर की प्राचीन उक्ति इस बात पर पूरी तरह लागू होती है। गांधी जी ने तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही इस गुण की महानता को पहचान कर इसे अपना लिया था। लंदन में शिक्षा प्राप्त करते समय अपने खर्च का हिसाब किताब देखकर उन्होंने इसे आधा करने की ठानी तथा अपनी योजना को बड़े सुंदर ढंग से क्रियान्वित किया। वे एक परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे तथा प्रति सप्ताह पैसे देते थे। उन्होंने देखा कि शिष्टाचार के नाते उस परिवार के सदस्यों को उन्हें कभी कभी होटल में खिलाने ले जाना पड़ता था तथा उनके साथ कई पार्टियों पर भी जाना पड़ता था। इन पर काफी खर्च होता था तथा साप्ताहिक बिल में कटौती संभव नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस झूठे मान सम्मान को तिलांजलि देकर अपना खर्च कम करना ही उचित है। उन्होंने उस परिवार के साथ रहना छोड़कर एक छोटे कमरे की तलाश की। इस प्रकार न केवल उनके साप्ताहिक बिल में कमी आई वरन साथ ही टैक्सी पर होने वाला खर्च भी बचने लगा। इस तरह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा वे खर्च को पहले से आधा करने में सफल हो गए। कहते हैं जब मनुष्य एक सद्गुण सच्चे मन से अपनाने का प्रयास करता है तो कई अन्य सद्गुण स्वतः उस सद्गुण के साथ चले आते हैं। गांधी जी को इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ जब मितव्ययिता की चेष्टा में उन्होंने पाया कि उन्हें सैर की अच्छी आदत भी पड़ रही है। उन्होंने जब अकेले कमरा लेकर रहना शुरू किया तो सोचा इस प्रकार प्रतिदिन 8-10 मील पैदल चलने की आदत भी उन्हें सहज ही पड़ गई तथा इसी आदत का यह परिणाम था कि इंग्लैंड प्रवास के दौरान न केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ वरन साथ ही एक सुडौल व मजबूत शरीर भी स्वतः तैयार हो गया। समय के सदुपयोग की शिक्षा गांधी जी ने लंदन प्रवास के दौरान अपने ही जीवन से सीखी। संस्कृत में समय की सदुपयोगिता पर एक सुंदर श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात बाल्यकाल में विद्या नहीं अर्जन किया, यौवन में धन न कमाया, प्रौढ़ावस्था में ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वृद्धावस्था में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। पर गांधी जी ने समय पर ही समय के सदुपयोग का सबक सीख लिया था। जब वे अकेले रहने लगे तो उन्होंने पाया कि उनके पास काफी समय बेकार बच जाता है। उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया लैटिन व फ्रेंच भाषाएं सीखकर। इस प्रकार बैरिस्ट्री की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मात्र समय के सदुपयोग द्वारा दो अतिरिक्त भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, शीर्षक था आम मनुष्य और महापुरुष। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में इस भक्ति गीत को लीजिए सुनी लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये भक्ति गीत।

त्रेता युग में जब पृथ्वी पर दानवों के अत्याचार, असत्य और अधर्म से पीड़ित ऋषि मुनि सुर नर की चीत्कार से देवलोक कांप गया, तब अपने प्रिय भक्तों के कल्याण के लिए भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती ने अपनी अलौकिक ज्योति से एक तेजस्वी दिव्य बालिका की रचना की और महादेवियों ने इस कन्या को नाम दिया वैष्णो देवी। आज सारा जग है जिसका गुण गाता।

0: 102.1 MHz पर प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 385 385।

श्री राम अवतार की पूरी कथा सुनाकर काकभुशुंडे उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरी समान बड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने कालभूषुंडी को निज सिद्धांत की सीख दी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानी में भी विज्ञानी, विज्ञानी में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, हम आपको दे दी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
1: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, तिलक दहेज मारो हो हम बदनसीब के। कहे मुरली बाबा ईश्वर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए कुछ कविताएं कवि अशोक ठाकुर से।
1: मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है, कभी मल में तो कभी पूजा की थाली में बैठता नजर आता है, कभी मल में तो कभी पूजा की थाली में बैठता नजर आता है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। हमें कहाँ एकाग्रचित्त होना, यह तो मन की बात है, प्रकाश पुंज दिया बाती के संग रहे या तो अंधेरी धरा के संग रहे, यही तो जीवन का तो दिन रात है, यही तो जीवन का दिन रात है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। देवता बनकर रहे हम या दानव बनकर रहे हम, यह तो मन की बात है, यह तो मन की बात है, दिए को जलने दे प्रकाश पुंज फैलने दे, यह तो मन की जज्बात है, यह तो मन की जज्बात है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच हमारी अपनी है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच हमारी अपनी है, सोच हमारी कर्म जाति की राह दिखाती, फूलों के संग गुंजार भरती, फूलों के संग गुंजार भरती, या तो कांटों के संग उलझा कर रखती, यह तो मक्खी की तरह भिनभिनाती है, यह तो मक्खी की तरह भिनभिनाती है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता है। कभी भोग विलास के संग इंद्राणी की खोज में, कभी भोग विलास के संग इंद्राणी की खोज में, कभी धर्म गाथा को उधेड़ कर हीन कर्म की ओर ले जाती है, धर्म गाथा को उधेड़ कर हीन कर्म की ओर ले जाती है, कभी भयावह अंधेरी घटा की ओर, कभी भयावह अंधेरी घटा की ओर, अपने अंदर के भूतल से टकरा कर रह जाती है, टकरा कर रह जाती है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। हे मातृभूमि ना जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी, हे मातृभूमि ना जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी, तेरी शान बान आन जाना पाए, दिलो दिमाग में रखी यही कहानी, दिलो दिमाग में रखी यही कहानी। भले घास की रोटी खाई, भले घास की रोटी खाई, कंद कंदराओं में गुजार दी जवानी, पर तेरी संस्कृति को रखी हमने अपने साज सफर पर सत्यवाणी। हे मातृभूमि न जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी। आताताइयों के अत्याचार को सहे हम, फौलादी भुजाओं की संग हमने, हंस हंस कर हम देते रहे कुर्बानी, समर संघर्ष से टकराते रहे, समर संघर्ष से टकराते रहे, मातृभूमि की खातिर अपने सर कटवाते रहे, मातृभूमि की खातिर अपने सर कटवाते रहे, पर मिटने न दिए अपने पौरुष को, हिमालय सा अडिग रखे अपनी जवानी, हिमालय सा अडिग रखे अपनी जवानी। परोपकार करते रहे अपना हाथ उठाते रहे, अन्यायी अत्याचारी व्यभिचारी को भी हम माफ करते रहे, अमृत धार लिए चले हम संजीवनी को बांटते रहे, हम संजीवनी को बांटते रहे, हम तेरी खातिर हे पुण्यभूमि मिटा दी हमने अपनी जवानी, हाथ में लिए कमंडल अमृत धारा को भरे हृदय पर, विश्व कल्याण हेतु बोलते रहे सदा सत्य धर्म की वाणी, विश्व कल्याण हेतु बोलते रहे सदा सत्य धर्म की वाणी। हे मातृभूमि न जाने कितने सपूत ने मिटा दी अपनी जवानी, कितने सपूत ने मिटा दी अपनी जवानी। परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, अपनी विशालता अपना स्वरूप दिखाने के चक्कर में, बमों की होड़ में विज्ञान की खोज के बीच नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, बढ़ती जनसंख्या मानवीय विचार स्तंभों को चकनाचूर करते नजर आती है, बढ़ती जनसंख्या मानवीय विचार स्तंभों को चकनाचूर करते नजर आती है, प्रकृति परमात्मा के विधान के संग आदमी छेड़छाड़ करते नजर आता है, विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया के विचार मंच बढ़ रहे हैं, विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया के विचार मंच बढ़ रहे हैं। कल्पना करें अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा, जीवन लीला का विनाश के साथ साथ सर्वत्र हाहाकार छा जाएगा, भारत माता के चेता महात्मा पूरे विश्व को मंगल साज देते आया है, देते रहेगा, यह है निश्चित बात। विश्व संकट से भारत के संतानों ने छटाई है घनघोर अंधेरी रात को, विश्व को बचाई है। परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं, हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं। अर्धनग्न बनकर हम उधेड़ बूंद के चक्कर में आकर किधर जा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं, लाखों की कमाई करते नजर आ रहे हैं, बेईमानी या ईमानदारी की सोच से परे, बेईमानी या ईमानदारी की सोच से परे एक विलासी जीवन की ओर अग्रसर नजर आते हैं, एक विलासी ओर की ओर अग्रसर नजर आते हैं। संस्कृति संस्कार को हम

0: तिलांजलि देकर हम संस्कृति संस्कार को हम तिलांजलि देकर हम एक दूसरे के समक्ष नरकंकाल सा नजर आते हैं, एक दूसरे के समक्ष नरकंकाल सा नजर आते हैं। रुपये पैसे वैभव के बीच, रंग महलों के आलिशान, चमचमाती दीवारों के बीच करा रहे हम, चमचमाती दीवारों के बीच करा रहे हम। मानवीय दीवारें बट रही बंधुत्व भाईचारा को रौंदते नजर आते हैं, बंधुत्व भाईचारा को रौंदते नजर आते हैं। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं। मन में हलचल विस्फोटक तेरे विचार रे, फिर कहां तेरे भाग में सुख शांति सार रे। अंदर में हलचल विस्फोटक विचार, फिर कहां तेरे भाग में सुख सार रे, सुख शांति सार रे। पाल रखा अपने अंदर लाभ लोभ लालच संसार, पाल रखा अपने अंदर लाभ लोभ लालच संसार। भला सुख से तुझे कहां रहने देता ये धार रे, आनंद रस का हरण कर लेता तेरा मन अंगार रे, आनंद रस का हरण कर लेता तेरा मन अंगार रे। तुझे मरोड़ते रहता देकर हलचल हजार रे, तुझे मरोड़ती रहता देकर हलचल हजार रे। करोड़ों का महल तेरा गाड़ी मोटर अपार रे, फिर ना जाने कौन सा विष पाल रखा अपने अंदर, मिटाना पाया फेरा हजार रे। उसी गोता में भूला सुख सार रे। मानवता का राग तेरे अंदर समा न सका। कभी अपना न सका रंग उपकार रे। अंदर मन में हलचल विस्फोटक तेरे विचार रे, फिर कहां तेरे भाग में सुख शांति सार रे। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, कहां भला इस दुनिया में बढ़कर तीर्थालय। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, कहां भला इस दुनिया में बढ़कर तीर्थालय। पाया हजारों शिवालय पर तेरी कोख से बढ़कर पाया न कहीं देवालय, पर तेरी कोख से बढ़कर पाया न कहीं देवालय। नौ मास सिंची हर पल पल तूने अपनी ममता से पोसी। तेरे हर एक बूंद से एतन मन है सिंची, फिर भी न जाने तेरी संतानों ने क्यों तुझे कर रखा बेगाना। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, मंगल साज लिए तूने हर पल पल आशीर्वाद का भंडार खोल दिया। जो भी था तेरे पास संतानों के लिए समर्पित कर बनी सदा देवालय। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय। ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा, ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। जहां तूने डाला डेरा उस आंगन को रखना सका तू साफ सुथरा। जब तुझे बीमारियों का अंबार से पड़ेगा पाला, तब तुझे पड़ेगा एक दिन पछताना। ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। तब तू किसका दोष दे डाले रे, तेरे मन आंगन में सदा द्वंद द्वेष कर रहा बसेरा। उस आंगन में तुम कभी रख न सका साफ सुथरा। द्वंद द्वेष जब तुझे जलन दे दे, जब तुझे जलाए, तब तू बीमारियों के अंबार से रहता टकराता, फिर तू पछताता रह जाता। ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा।
1: आप सुन रहे थे काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कविताएं कवि अशोक ठाकुर से। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। पेश कार्यक्रम गीत संगीत, लीजिए सुनिए अल्ताफ राजा की आवाजों में कुछ गीत, उसके पहले कुछ जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत, आवाज अल्ताफ राजा और साथी की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:58 हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगी समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर हमारे रांची केंद्र से।

0: हीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस

0: की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव आज से राजस्थान के दो दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
5: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूरतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मतदाता सत्यापन का रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के लिए दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति। बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ। देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए होगा भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर आज रांची में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची में सुधार और घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल रांची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के पांचों डिवीजनल कमिश्नर मोर्चा संभालेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन और सूची में सुधार के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1: एसआईआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण दो डेट का बारे में बताएंगे। वो इन्यूमरेशन देने वाला समय है 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी आधारित पुलिसिंग को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कप्तानों को नए आपराधिक कानूनों और तकनीक आधारित पुलिसिंग का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सीसीटीएनएस प्रगति और ई साक्ष्य पोर्टल की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को 60 से 90 दिनों में निपटाने पर दिया जोर। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका शामिल करने के लिए बनी मंत्रियों की समिति की आज दूसरी बैठक हो सकती है। समिति सदस्य और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पहली बैठक में विभाग से कुछ जानकारियां मांगी गई थी। आज की बैठक में विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे।
2: भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर के बात, कुछ जिलों में कुड़माली को ऐड करने की बात हो रही है। और हम लोगों के संज्ञान जो जनजातीय भाषा, चाहे वो बिरहोर, मालतो या फिर असुर भाषा को ड्रॉप किया गया, तो कमेटी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सीएम फेलोशिप योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के होनहार छात्रों को पीएचडी के लिए फेलोशिप और शोध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100% स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में प्रस्तावित क्लस्टर सिस्टम से छात्रों को होने वाली दिक्कतों पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही झरिया के राजा शिव प्रसाद कॉलेज की समस्याओं के समाधान की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल में महिला बंदी के साथ कथित शोषण मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा पत्र लिखा। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के बावजूद आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47

0: 40,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: केंद्रीय टीम और गृह मंत्रालय के अपर महारजिस्ट्रार सुनील कुमार ने रांची में जनगणना 2027 के पहले चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने ओरमांझी, नामकुम और कांके के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मकान सूचीकरण कार्य की सराहना की। उन्होंने यहां बेहतर समन्वय और प्रागणकों के प्रशिक्षण को आदर्श बताया। राज्य में बालू की किल्लत दूर करने के लिए 10 किलो के 35 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। इससे निर्माण कार्य की गति मिलेगी और वैध आपूर्ति बढ़ने से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। पूर्वी सिंहभूम को सबसे बड़ा खनन क्षेत्र मिला है, जबकि रांची और बोकारो सहित कई जिलों में लीज डीड साइन हो चुकी है। धनबाद रेल मंडल में चलाए गए मेगा टिकट चेकिंग अभियान के तहत बिना टिकट यात्रा कर रहे 1,570 यात्रियों को पकड़ा गया है। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 10,03,000 रूपये से अधिक की राशि वसूली गई। रेलवे ने यात्रियों से हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की। झारखंड में उमस और लू से जनजीवन बेहाल, पलामू में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और हजारीबाग में गर्म हवा चलने की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 25 मई तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर ललित भनोट ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि यह प्रतियोगिता कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। देश में पहली बार इस टूर्नामेंट से वर्ल्ड एथलेटिक्स के दिशा निर्देशों के तहत जेंडर टेस्टिंग की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
2: 50 से ज्यादा ऐसे एथलीट हैं जो ओलंपिक में गए हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा काफी लोग हैं जो इंटरनेशनल एथलीट हैं और दूसरी जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, एशियन चैंपियनशिप है, एसएएफ चैंपियनशिप है, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
1: राज्य के पहलवान अमित कुमार वियतनाम में होने वाली अंडर 23 एशियन ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह 82 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती पेश करेंगे। खेल विभाग ने 23 से 31 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के लिए अमित को पदक जीतने की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में एक साथ 27 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, सारंडा में लाल किला ढहा, 25 नक्सलियों सहित 27 का सरेंडर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना पर 4 अभ्यर्थी हिरासत में। प्रभात खबर ने राज्य के सीईओ के हवाले से लिखा है कि एसआईआर में बिना सुनवाई नहीं कटेगा वोटर का नाम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कावेरी रेस्टोरेंट के संचालक लव भाटिया ने की आत्महत्या, जहर खाने की आशंका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मतदाता सत्यापन के रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति, बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ, देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होगी भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सबसे पहले हम सुनवाते हैं ये गाना।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का ये गाना, आवाज लता मंगेशकर की थी। इसी के साथ मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगी विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयां, औषधियां, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ। प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं। पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें। जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूं और जंप भी कर रही हूं, गा भी रही हूं, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

कमी है गुलामी। संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बाहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घी उन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:19 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रानी। स्वीकार कीजिए रानी का प्यार भरा नमस्कार जोहार। आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम मिलते हैं रेडियो के माध्यम से हमारी ढेर सारी बातें होती है, कुछ मनोरंजन की तो कुछ जानकारियां की भी जानकारियां हम आपको देते हैं। तो कार्यक्रम में हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं खूबसूरत सा गीत सुनते हुए। लीजिए सुनिए गे गाना।

श्रोताओं, आज है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यह दिन जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व और वैश्विक पारिस्थितिकी की तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो कार्यक्रम में और भी जानकारी देंगे हम आगे। फिलहाल सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

रात गुजरी तो फिर महकती सुबह आई, दिल धड़का फिर आपकी याद आई, सांसों ने महसूस किया हवा की खुशबू को, जो आपको छूकर हमारे पास आई।

श्रोताओं, गर्मी काफी पड़ रही है, हमें बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। घर में बच्चे बुजुर्ग हैं तो और भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, कहीं तबीयत बिगड़ न जाए, इसलिए सतर्क रहिए। भोजन ताजा खाएं, पानी ठंडा पिए और फिल्टर करके ही पिए। फल भी खाएं, खीरा, तरबूज, ककड़ी, पपीता काफी अच्छा रहेगा। सत्तू का शरबत, अमझोरा, आम का अमझोरा जो बनाते हैं गर्मी के दिनों में, उसे भी आप बनाकर पी सकते हैं, लू से बचे रहेंगे। लस्सी पिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खूब पानी पिए, धूप में निकले तो छाता अवश्य ले लें या फिर सर पर तौलिया रख लें। बच्चे को गर्मी में धूप में बाहर खेलने न दें, धूप से आकर तुरंत एसी रूम में न जाए या एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाए। और हाँ, धूप से आकर तुरंत पानी न पिए, थोड़ी देर रुककर पानी पिए। ठंडे फल हमेशा खाएं और भोजन का भी ध्यान रखें, ताजा खाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी और सभी परेशान हो जाएंगे, खुद भी होंगे और परिवार के सभी लोग भी परेशान रहेंगे। लू से बचकर रहें, यदि किसी कारणवश तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत इलाज करवाएं, डॉक्टर से मिले, संपर्क में है डॉक्टर की, और उचित इलाज करवाएं, यही हम कहेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, देखिए मौसम में बदलाव हमेशा होते रहता है, पर हर मौसम में हमें सतर्क भी रहना पड़ता है। कई बार यदि हम ऐसा करते हैं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम लापरवाही बरतते हैं, तो परेशानी हमें ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए बचकर रहिए और स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। फिलहाल हमारे साथ सुनिए।

फिर से तेरी यादें सताने लगी है, वही मौसम वही दिलकश तेरी बातें मुझे सताने लगी है। कैसे कहूँ तेरी यादें इतनी तड़पाती है कि अब कहीं रह ना पाऊँ तेरे बिना। चले आओ मेरी आवाज़ को सुनकर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए, जानकारी के साथ साथ खूबसूरत सा गाना भी हम आपको सुनवा रहे हैं और कुछ जानकारी भी दे रहे हैं। दोस्तों, सुबह

जल्दी उठने के बहुत से फायदे हैं, इस बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। हमें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है, और भी कई बात है। सुबह जल्दी उठने पर हमें काम करने के लिए काफी समय मिल जाता है, ऐसा होता है ना, चाहे वे घरेलू कार्य हो या कामकाजी जीवन से जुड़े। यही नहीं, इससे हमें दिन में किसी प्रकार की हड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा भी गया है कि सुबह जल्दी उठना व्यक्ति और स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है, व्यक्ति को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। तो दोस्तों, स्वस्थ और मस्त रहिए, सुबह उठिए और अपने कार्य के साथ आगे बढ़िए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

श्रोताओं, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं। 22 मई को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें शेर शाह सूरी की मृत्यु, अमेरिकी राइट बंधुओं को फ्लाइंग मशीन का पेटेंट मिलना और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत शामिल है। तो इस संबंध में थोड़ी बातें करते हैं आपसे। 1545 ईस्वी में भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी की मृत्यु एक बारूद विस्फोट के दौरान हुई थी। 1772 में आधुनिक भारत के जनक और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। आज के दिन 1906 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स को उनकी फ्लाइंग मशीन के लिए आधिकारिक पेटेंट प्राप्त हुआ था। आज के दिन 1960 में चिली में इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.5 मापी गई। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन मॉस्को पहुंचे, जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी। 1210 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 मैंगलोर के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनमें 158 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आज ही के दिन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते खूबसूरत सा गीगाना।

श्रोताओं, प्यार में हमेशा जुदा होना पड़ता है। खुशी न मिले कोई गम नहीं, गम है तो बस इतना कि आंसुओं को पीना पड़ता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान 2026 का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

जहां से आप सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: Now, right now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा.
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है. यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा, उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल. तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र.

0: 1965 में। स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा

0: उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।

0: आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
1: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
2: And now the awards are going to be given to all the people for their gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
3: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धन पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक,

प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है, और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से
कृत्रिम तरीके से जनसंख्या

प्रौद्योगिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत

मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है।

मगर भारत सरकार अड़ग रही, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरीड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे।

0: മാത്രം.
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ.
2: स्मृति चिन्ह भेंट करें जो महोदय के हृदय में
3: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा.
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. स्मृति चिन्ह.
3: धन्यवाद श्रीमान. और
4: हेलो एवरीवन, टू मनीष अग्रवाल
3: विशेष महानिदेशक
4: बाय द डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद.
5: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है. आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं. मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है. आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है. हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं. सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है. आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा. मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं. मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है. धन्यवाद. जय हिंद.
4: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत.
6: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है. राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार.

0: come to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीना और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
2: आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान 2026 का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 12:05 हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों की महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं, अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने, बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत, क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे

में तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया। देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया। वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा, लाख बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों, और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:09 हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश, अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिनभर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने उड़ीसा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। रांची के होटवार जे

0: जारी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 जून का समय निर्धारित किया गया है।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दोस्ताना लेनदेन को कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता, इसलिए फ्रेंडली लोन कानून पर एनआई एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध किए गए 2 लाख रुपए के लेनदेन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही संक्षिप्त शटडाउन की अनुमति दी है। पाकुड़ जिले के झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए हुआ है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह पंचायत जिले के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरक बनेगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया, अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जिसमें कि महिलाओं के समूह को इंक्लूड किया जाए।
1: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एमडीआई गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेल के भविष्य में लीडर्स तैयार करना है। इसके तहत संयुक्त रिसर्च, केस स्टडीज और कस्टमाइज लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने चालीयामा स्टील प्लांट और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट, चेतावनी बोर्ड और 2 नए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक को लक्ष्मण बताते हुए मर्यादा में रहने की सलाह दी।
3: तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो बंद कराएगा, उसका कोई नहीं बंद करा सकता है। छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा।
1: वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए सांसद को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए।
4: क्रिकेट यह मठा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एक्समैन वहां खड़ा किया गया, जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा, ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हर जगह हजारीबाग में लोगों की सहभागिता होना चाहिए। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि चिट्ठी का बपौती नहीं है।
1: हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे।
5: 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये सभी इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो नेटवर्क है ये चतरा से लिंक्ड है और जहां से ये सामान लाता था उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई वो करेंगे।
1: पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छतरपुर में ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक अनाथ बेटी की शादी कराई। पाटादोहर निवासी बर्ती कुमारी की शादी अर्जुन सिंह से तय कर ग्रामीणों

ने इसे संपन्न कराया। इस विवाह का पूरा खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फुटबॉल सीजन का समापन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में दबदबा बनाने के बावजूद टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ जमशेदपुर 22 अंकों के साथ लीग में पांचवें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश, अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकराहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, पांचवें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:20 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।
1: बातें की है, लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई। एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है। पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
2: झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला।

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक।

0: हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको। इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं, तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।
1: मुझे

चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए जून महीने की गर्मी का। जून महीने में सोचेंगे इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए। टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाक काल कहा जाता है। यहाँ निदाक का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्मलता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़ा होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तुम्हें बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितनी इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी, उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किन की है।

0: फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी
2: और आशीर्वाद दे रहा है एक किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी
2: और आशीर्वाद दे रहा है एक किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक

भारतीय राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है, इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों, तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए, वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन,
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना, Secretary P.C. Lyon.
0: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
2: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फ्यूलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
3: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम।

सुरों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: विचारा,
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी और आईपीएल क्रिकेट में

0: शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
5: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
6: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: केंद्र है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

0: निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।
1: बिल्कुल, ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें।
0: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई सीबीएसई नीति के तहत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने न्यायालय के मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए बिजली व्यवस्था में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा, हल्की आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहने का अनुमान है। पलामू, गढ़वा, सरायकेला और जमशेदपुर जैसे जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दिल्ली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउसवाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का
0: अच्छा
1: शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खानेदार फिल्म।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सगी सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ट्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा रहता है हमेशा, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सकें बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है

0: ब्रेड बनाना सिखाती हूँ. बहुत तरह की ब्रेड होती हैं. केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है. तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
1: जी.
0: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे.
1: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी. तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना, कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
0: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
1: जी.
0: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस पे बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
1: जी.
0: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
1: जी.
0: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है. मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो.
1: बिल्कुल,
0: केक बहुत अच्छा बनता है.
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें. इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है.
0: हाँ,
1: जी. तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
0: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
1: जी.
0: चाहे कोई पतीला ले
1: जी.
0: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
1: जी.
0: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं. और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है.
1: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
0: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं. अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है. अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए.
1: क्या बात है. और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए.
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है. और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए. हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे. गाने का बहुत शौक था. शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है. तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है. मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था.
1: क्या बात है,
0: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी.
1: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से.
0: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा.
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की. आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान.
1: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं.

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: और एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी, मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारे यहाँ बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही।
0: जी, और कल्पना जी आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरे झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: सबको इसका, हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है।

0: कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इससे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
1: जी,
0: दोनों बच्चे उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
1: जी।
0: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सब के लिए, तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
0: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम घूम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम घूम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा चाहिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी,
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
0: जी,
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है, और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
0: जी, जी।
1: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित, सुमित, और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा, अपने पतिदेव को हमारी

0: तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान, सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो, जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती

0: लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप गुणों की आरती, वाणी में ममता आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पार
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए।

0: फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। मॉनिटर लिजर्ट के अंगों की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट ने आज उन्हें और उनके बेटे अविनाश रंजन को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि विलुप्त प्रजाति के पशु के अंगों की तस्करी के आरोप में राजीव रंजन मिश्रा और उनके बेटे अविनाश रंजन और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया था। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोल कंपनियों से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी की घटना में शामिल जेजेएमपी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: कर लो।
1: मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज

0: रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम?
1: मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं।
0: लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई?
1: एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है।
0: तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा।
1: मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा।

स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
3: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
3: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी

0: चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जी जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ की विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी,
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती

0: ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।

0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए,
3: हाँ
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थी मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ
2: ये देखो
3: देखो देखो कितना छोटा था, नहीं ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
1: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
2: हाँ।
3: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
3: बढ़िया।
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
1: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
1: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर

0: ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाए इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800 44 0559।

0: कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, हमारे रांची केंद्र से।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से 23 मई से अपने मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित अनमैप्ड मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह सूची अगले दो सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में आम्रपाली परियोजना में कार्यरत एनसीसी लिमिटेड से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी करने के मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी को 5 अपराधियों ने कंपनी के ट्रक को रोककर सुपरवाइजर और ड्राइवर से मारपीट की तथा ट्रक में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बिजली बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: चल रहा है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का अगला गाना, एक और हमशिका अय्यर की आवाजों में। फिल्म का नाम है रावण।

एडिसन का ये गाना था नीरज श्रीधर और अमरीका काक की आवाजों में। और अब प्रोग्राम का अगला गाना मीत ब्रदर्स और साथियों की आवाजें हैं फिल्म

कपूर और मित्र ब्रदर्स की आवाजों में रॉय फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना। और अब फिल्म संगीत प्रोग्राम में अगला गाना आपको सुना रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है राजा भैया।

कायद में कोरोधत नारायण की आवाजों को आप सुन रहे हैं तेरे नाम फिल्म के इस गीत में। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुकेश का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही जोहार और सबका कार्यक्रम में स्वागत भी है। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकतर आबादी जो है वो खेती बारी करती है और पशुपालन करती है, और गांव के विकास का दो ही आधार है, खेती बारी और पशुपालन। और पशुपालन में हम देखते हैं कि बकरी पालन, जिसको हम लोग गरीबों का एटीएम भी बोलते हैं, ये किसान बहुत चाव से पालते हैं। और इसका जो है कि रख रखाव कैसा होना चाहिए, शुरुआत में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सही बकरी पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग लेने से ये होता है कि हमें जानकारी मिलती है कि कब हमें क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से हम काम करते हैं, और जब योजनाबद्ध तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। तो बकरी पालन में सबसे पहला चीज आता है उसका आवास का प्रबंधन। आवास का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊंचा वाला जमीन में उसका आवास या शेड, जो बकरी शेड हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण करना चाहिए। जो जल निकासी है उसका बेहतर इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको गंदा हो गया वहां पे, अगर हम उसको धोते हैं या साफ करते हैं तो वो पानी आराम से निकल जाना चाहिए। खिड़की हो या दरवाजा हो, वो बड़ा आकार का रखना चाहिए ताकि हवा का जो आवागमन है वो आराम से हो सके। अगर हम बात करते हैं कि 100 बकरियों के लिए कितना जमीन चाहिए, तो 100 बकरियों के लिए कम से कम अगर 1.5 एकड़ अगर हमारे पास जमीन होता है तो उसमें हमारा आवास या सेट का निर्माण भी हो जाता है, साथ ही साथ वो आराम से उसमें चल फिर सकते हैं, जिससे उनका ग्रोथ बढ़िया ढंग से होता है। इसके बाद एक चीज आता है कि नस्ल का चुनाव। तो नस्ल का चुनाव के लिए अगर हम मांस के लिए अगर पाल रहे हैं बकरी, तो उसमें ब्लैक बंगाल, सिरोही, उस्माबादी, ये नस्ल ऐसी होती है जो मांस के लिए बढ़िया होती है। और अगर दूध के लिए अगर हम पाल रहे हैं या और मांस के लिए अगर हम पाल रहे हैं, दोनों के लिए पाल रहे हैं, तो जमुनापारी। तो ये हुआ नस्ल, क्योंकि अगर हम नस्ल का चुनाव बढ़िया करते हैं तो आगे भी हमारा काम उसमें बढ़िया होता है। साथ ही साथ संतुलित आहार इनको मिलना चाहिए। संतुलित आहार का अगर हम बातचीत करते हैं तो ये संतुलित आहार मौसम के अनुसार बदलता भी है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो अभी जितना से ज़्यादा हम लोग हरा चारा अगर बकरी पालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा बकरी का जो है ग्रोथ उसमें होता है। भूसा होना चाहिए। अगर हम उसमें दाना देते हैं, जो कि मक्का या चोकर हम देते हैं, तो वो अच्छा से वो खाएंगे भी और उसका जो ग्रोथ है वो बढ़िया होगा। साथ ही साथ साफ पानी, उसमें अगर गर्मी का समय में हम गुड़ मिला देते हैं तो बकरियां है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगी, जिनसे उनका जो शरीर है वो बेहतर होगा। पानी जो है समय समय पे देते रहना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा में समय समय पे पानी देते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा बकरियां पानी पियेंगी उतना उनका सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद एक आता है टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण अगर हम पहले करवा लेते हैं तो उसमें जो है बकरियां वो बीमारी से उनको सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो टीकाकरण में जैसे कि है PPR, ET या FMD, इस तरह का बीमारी इसमें आने का ज़्यादा संभावना होता है बकरी पालन में, तो अगर हम पहले से टीकाकरण कराते हैं तो ये बीमारी नहीं आती है। इसमें देखा जाता है कि FMD जो बीमारी होती है, जो कि फूड एंड माउथ डिजीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसमें, जो कि गाय पालन में भी इसमें आती है, उसमें मुंह में जो है वो उनका एक बीमारी हो जाता है जिनसे उनको खाने में समस्या होता है, और पैर में बीमारी हो जाता है जिनसे उनको चलने में समस्या हो जाता है। और जैसा कि अगर कोई भी बीमारी कोई भी पशु को या गाय पालन हो या बकरी पालन हो अगर होता है तो आप देखते होंगे कि उनका सेहत पे वो चीज़ असर करता है, और जब सेहत पे असर करेगा तो वो उनका ग्रोथ नहीं होता है, जिनसे जो है किसान हो या पशुपालक जो भाई है उनको वो नुकसान पहुंचाती है। सरकारी अगर मदद का हम बात इसमें करते हैं तो नाबार्ड के तहत या राज्य का जो सरकारी योजना के तहत, उसको जो है हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लाभ हमें नाबार्ड की तरह से मिल सकता है या राज्य का जो सरकार का योजना है उसके तरफ से मिल सकता है, क्योंकि समय समय पे ये दोनों जो है कि ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज भी करती है वहाँ पे, चाहे वो ट्रेनिंग आ जाके होता है चाहे आवासीय होता है। तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग 3 दिन का हो या 5 दिन का हो, जब आप ट्रेनिंग कोई भी चीज़ का ले लेते हैं तो आपको पूरा जानकारी मिल जाता है कि कब कहाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप नुकसान से बच सकते हैं और आपको जो भी व्यवसाय आप करेंगे उसमें बढ़िया होगा। बात रहा है कि इनका लागत क्या होना चाहिए, इसका बाजार क्या होना चाहिए, तो बाजार का अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला जो समय है, देखिए एक बकरीद भी आ रही है, इसमें देखिए बकरियों का दाम अभी बढ़ा हुआ है, तो इसमें आप इसमें है बाजार में रेट इनका ज्यादा मिलता है इसमें, तो आसपास के जो बाजार होते हैं वहां पे आप जाकर के अच्छा से अच्छा ये बकरी पालन आप कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और अगर आप 100 बकरी रखते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी इसमें होता है। तो ये रहा बकरी पालन का। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम को करते हैं तो उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। तो ये रहा बकरी पालन का जानकारी। अब देखिए आगे समय हो चुका है जरूरी संदेश का, तो सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: तो अभी आप लोगों ने सुना जरूरी संदेश, अब बढ़ते हैं आगे जानकारी की तरफ। और आज हम जानकारी फिर जो है जल संरक्षण के बारे में लाए हुए हैं। जल संरक्षण क्यों है जरूरी और क्यों है आज का समय का ये मांग? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जल है उसे हम ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें जितना जो जल है, जितना जरूरत है, उतना ही हमें खपत करना चाहिए। अगर हम खेती बाड़ी का बात करते हैं तो आप देखते हैं कि खेती बाड़ी में पानी का बहुत जरूरत होता है। और इसमें जो आज के किसान है, आधुनिक विधि से अगर सिंचाई प्रबंधन करते हैं तो उन कम पानी में बेहतर से बेहतर वो सिंचाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो टपक सिंचाई बूंद विधि या फव्वारा विधि का जो किसान है वो इस्तेमाल करते हैं। टपक सिंचाई बूंद विधि या अगर फव्वारा विधि का जो किसान है वो अगर प्रयोग करते हैं तो उनसे उनको फायदा ही फायदा है। फायदा उनको क्या है कि कम समय में उनका खेत का पटवन जो है वो उनका पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर हम ये विधि का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लेबर कॉस्ट होगा। जब लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वो भी हमारा जो लागत उसमें बढ़ेगा। तो टपक सिंचाई बूंद विधि और फव्वारा विधि से लागत और समय दोनों का बचत होता है। साथ ही साथ जब हम कोई भी फसल बोते हैं तो इसमें ये विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं उसमें खरपतवार नहीं होता है। खरपतवार नहीं होने से है कि पौधा का जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो उनको मिलता है, वो बेकार का वो नष्ट नहीं होता है। तो फव्वारा विधि और टपक सिंचाई विधि से जो किसानों के लिए ये वरदान है। और देख रहे हैं आजकल के जितने लगभग किसान हैं जो बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करते हैं वो टपक सिंचाई बूंद विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चिंग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल ये कर रहे हैं तो लंबा चौड़ा अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। जिनके पास जमीन है वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो लीज का जमीन ले करके वो अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक बात है कि जब किसान जब है लीज का जमीन जब ये लोग लेते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि उसका मिट्टी कैसा है, उसका सिंचाई का वहाँ प्रबंधन क्या है, सिंचाई का क्या साधन है, कुआं है या बोरिंग है या और कुछ है। क्योंकि सरकार भी अब देखिए पीएम कुसुम योजना की तरफ से देखिए सोलर जो पैनल सरकार दे रही है उससे अब देखिए सोलर के माध्यम से ही सिंचाई अब हो जाता है और कम समय में सिंचाई ये होता है। श्रोताओं अब हम आगे बढ़ते हैं जानकारी की तरफ और आज हम जानकारी लाए हुए हैं योजनाबद्ध तरीके से लत्तेदार सब्जियों की खेती। जानकारी दे रहे हैं सोनू कुमार जो कि युवा किसान है नवादा के प्रखंड कटकमदाग, और इनसे बातचीत हमारी ओर से कर रहे हैं यानी कि मैं मुकेश कुमार।
2: आज हम आए हुए हैं नवादा गांव में जो कि प्रखंड कटकमदाग के अंतर्गत आता है और हमारे सामने है एक अनुभवी किसान सोनू कुमार। तो सोनू जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार है।
3: जोहार जोहार
2: सोनू जी, आप खेती बाड़ी कितना दिन से कर रहे हैं?
3: हाँ तो सर बचपन से कर रहे हैं।
2: कितना कट्ठा हम खेती बाड़ी कर रहे हैं?
3: कम से कम वही एक एकड़।
2: एक एकड़ में खेती बाड़ी करते हैं, क्या क्या अभी क्या आपके खेत में लगा हुआ है?
3: मेरा खेत में कद्दू है, खीरा है, झींगी परोर है, नेनुआ है,
2: यानी पूरा गर्मा वाला सब्जी लगाए हुए हैं।
3: गर्मा वाला सब्जी है सर
2: जी। हाँ अच्छा, सबसे बड़ा बात आता है खेती बाड़ी में मिट्टी। अगर हमारा मिट्टी बढ़िया होता है तो खेती बाड़ी भी बढ़िया होता है। तो मिट्टी बढ़िया हो उसके लिए आप कितना बार खेत को जुताई करते हैं?
3: 3 बार सर।
2: 3 बार खेत को जुताई कर देते हैं। तो ये जो जुताई है क्या चीज करते हैं? हल बैल से करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं? तीनों बार ट्रैक्टर ही लगाते हैं,
3: तीनों बार
2: पूरा मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। और इसमें मिट्टी में डालते क्या है, गोबर खाद डालते हैं?
3: गोबर खाद डालते हैं सर।
2: 1 एकड़ का आपका खेत है, कितना गोबर खाद डालते हैं आप?
3: 1 टका गोबर देते हैं और कम से कम 2 बोरा डीएपी।
2: यानी 1 ट्रैक्टर गोबर खाद आप डालते हैं, 2 बोरा डीएपी इसमें देते हैं, ताकि एक संतुलन भी बना रहे, उपज भी बढ़िया हो और मिट्टी भी हमारा बढ़िया रहे। गोबर खाद जो आप डालते हैं इससे क्या फायदा होता है खेत का मिट्टी को?
3: क्या होता है सर, गोबर खाद कछुए बनता है हर चीज।
2: बस कहने का मतलब है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है,
3: बना रहता है,
2: नमी धारण करने की क्षमता रहती है, बनी रहती है। जो भी चीज इससे उपज होता है स्वादिष्ट होता है, बीमारी भी कम आता है। तो हमें आपसे बात कर रहे हैं, आपका खेत का मिट्टी का, आपने मिट्टी बहुत बढ़िया कर लिया और 3 बार आपने जुताई किया, मिट्टी को भुरभुरा कर दिया। उसके बाद आता है बीज, उन्नत बीज का, क्योंकि मिट्टी बढ़िया हो जाए और उन्नत बीज अगर हम लगा लेते हैं तो सोने पर सुहागा होता है, खेती बाड़ी बढ़िया होता है। तो उन्नत बीज में आप खीरा का कौन सा बीज लगाए?
3: हरकुलस वाला है सर।
2: हरकुलस कंपनी का आप खीरा लगाए हैं और इतना झिंगी लगाए हैं, नेनुआ लगाए हैं, सब उन्नत बीज आप लगाए हुए हैं। अच्छा, जब भी आप खेती बाड़ी करते हैं तो घर में परिवार के सदस्य मिल बैठ के योजना बनाते होंगे कि कौन से खेत में हम क्या लगाएंगे, कितना कट्ठा में खीरा लगाएंगे, कितना कट्ठा में नेनुआ लगाएंगे, कितना कट्ठा में झिंगी लगाएंगे, ये सब योजना बनाते हैं?
3: हाँ सर बनाते हैं।
2: बनाते हैं क्योंकि 1 एकड़ का आपका खेत है, आप खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं और मिला जुला खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि एक फसल आप लगा दिए हैं

0: खीरा भी है, नेनुआ भी है, झिंगी भी है, कद्दू भी है, ताकि बाजार में जब ये जाए तो एक अच्छा आपको रेट भी मिले, किसी में कम मिले तो किसी में ज्यादा मिल जाता है, पूरा बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है। सिंचाई का क्या साधन है आपके पास?
1: सिंचाई का साधन वही कुआं है, बोरिंग है।
0: सिंचाई का साधन आपका, क्योंकि आप खेत में खड़े हैं, हम कुआं भी आपका है, बोरिंग भी है। और अभी के समय में कितना बार सिंचाई करते हैं?
1: दो दिन
0: सप्ताह में 2 दिन कर देते हैं, हो जाता है बढ़िया आपका सिंचाई, है ना। अच्छा, ये जो आप खीरा वगैरह लगाए हैं, बीमारी कुछ आता है इसमें?
1: बीमारी तो बहुत बीमारी सर, ये जो छोटा छोटा जो पंखी जो उड़ता है ना, उससे ज्यादा बीमारी फैलता है, वही कीटनाशक वाला दवा देते हैं।
0: तो पत्ता में क्या क्या लक्षण देखते हैं पत्ता में?
1: सर पत्ता में तो वही मतलब कीड़ा लगने पर वही कीड़ा के लाल हो जाता है पत्ता, और वही कीड़ा से जब पत्ता पर जाता है ना तो वही कमजोर कर देता है,
0: कमजोर कर देता है। फिर आप उसको दवा का छिड़काव करते हैं तो पता ठीक हो जाता है। दवा का छिड़काव कब करते हैं, कौन सा समय, सुबह में शाम में कब करते हैं?
1: शाम में 3 बजे सर,
0: शाम में 3 बजे के लगभग, क्योंकि उसमें धूप भी ज़रा कम होती है, हवा भी कम चलता है, बीमारी को दूर करने के लिए मिलना चाहिए, वो चीज मिलता है। अच्छा, बहुत से किसान हम देखते हैं कि कुछ समय पहले खेती करते, मान लीजिए अभी आप खीरा लगाए हुए हैं, वो और कुछ समय पहले लगा देते हैं। पहले लगाने से ये होता है कि उनका पहले माल जाता है उनका, और बाजार में पहले जब माल जाता है तो उनका रेट भी बढ़िया मिलता है। इस तरह का योजना भी बनाते हैं आपकी? नहीं, पहले थोड़ा मेरा माल अगर चल जाता है बाजार में तो रेट भी बढ़िया मिलेगा, योजना बनाते हैं?
1: हाँ सर, बनाते हैं।
0: ठीक है, ये उपज आपका निकलेगा 2.5 महीने के बाद निकलेगा, तो व्यापारी खेत में आ जाता है या फिर आप बाजार ले जाते हैं?
1: सर बाजार लेना पड़ता है,
0: बाजार ले जाते हैं आप, जाके बाजार में बेचते हैं। कौन सा बाजार आपका है बेचने के लिए?
1: यही है
0: बोहा महादेव के पास आप जाके बेचते हैं। तो ले जाने के पहले एक चीज होता है कि आप जैसे खीरा हुआ या कद्दू हुआ, झिंगी हुआ, ये सब जो तोड़ लेते हैं तो ग्रेडिंग करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, बढ़िया चीज छांट लेते हैं, अलग अलग इस तरह का काम करते हैं। तो बढ़िया चीज अगर हम छांट लेते हैं तो बाजार में वो देख करके ज्यादा हमको रेट भी मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर दाग उग रहता है तो कस्टमर है तो बोलता है कि दाग है।
1: हाँ, वो छांटना पड़ता है सर,
0: छांट लेते हैं ना,
1: छांटना पड़ता है।
0: अरे चूंकि आप इतना दिन से खेती बाड़ी कर रहे हैं, पहले का खेती में और अब का खेती में आप क्या अंतर देखते हैं?
1: अंतर तो है सर, देखिए पहले का कुछ लोग कहता था ना कि कुछ नहीं होता था, कहाँ से उपजाता था, लेकिन अब बहुत तरक्की में है सर, कि ऐसा खेती किसान है कि बहुत आदमी के लगा लग खेत में।
0: जी हाँ, यानी पहले का खेती में जितना आदमी मेहनत करता था उपज उतना नहीं होता था, और अब का खेती में आदमी मेहनत करता है तो उपज भी बढ़िया होता है। अब देखिए आप ही है कि आपके खेत में 2 कुआं है, एक आपका डीप बोरिंग आप करवा लिए हैं और पूरा लगे हुए हैं खेती बाड़ी में। आपका साथ कौन कौन देता है
1: खेती बाड़ी में? वही है कि 2 लड़का है, एक हम है, 3 वो, एक मेरा परिवार है, 4 आदमी लगे रहते हैं।
0: 4 आदमी लगे हुए रहते हैं खेती बाड़ी में पूरा, और सालों भर खेती बाड़ी करते हैं आप। तो इससे पहले इस खेत में क्या लगा था?
1: पहले ये खेत में तो आलू लगा था, तो वही हरा सब्जी लगाए हैं, देखिए अब क्या होता है।
0: यानी बदल के लगाते हैं, फसल चक्र का पूरा ध्यान देते हैं, एक फसल लगाए दूसरे बार दूसरा फसल बदल के लगाएंगे, और फसल चक्र को अपनाने से किसानों को फायदा होता है, उपज बढ़िया होता है, रेट भी बढ़िया, जब उपज होता है तो रेट भी बढ़िया मिलता है, तो किसानों को ये फायदा होता है। आप हमारे जो युवा श्रोता है, क्योंकि अपना समय इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं, बहुत से गांव में भी लड़के लोग होते हैं जिनका खेत अपना है लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, अपना समय कुछ करने में कुछ खेलने में व्यर्थ कर देते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या वो करें?
1: चाहते लड़का लोग को 2 घंटा समय निकालिए सुबह शाम, खेती बाड़ी व्यवस्था कराइए, उससे कुछ उपजा हो जाएगा, घर का परिवार रोजी रोटी चलेगा, हर चीज चलेगा।
0: यानी अगर वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपना खेत है, क्योंकि देखते हैं हम बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना काल में अपना बाहर में जब काम करते थे, आज के समय में वो यहाँ गांव में अपना आ गए हैं, इनके पास खेत है वो तो खेती बाड़ी करते ही हैं, और जिनके पास खेत नहीं है वो लीज का जमीन लेकर के भी खेती बाड़ी बहुत से लोग करते हैं। आपके आस पास में भी बहुत से लोग लीज की जमीन लेकर खेती बाड़ी करते हैं?
1: लीज वाला तो अभी हमारा गाँव में 100 रुपया कट्ठा चल रहा है सर, बहुत आदमी लगे हुए खेती में,
0: 100 रुपया कट्ठा इधर चल रहा है लीज का जमीन में इसका, और लीज का जमीन लोग अलग के करते हैं तो देखते हैं कि हाँ कहाँ पे बढ़िया मिट्टी कहाँ पे है, सिंचाई का क्या साधन है, आसपास का माहौल कैसा है, और देखा जाए तो व्यवसायिक पूरा ढंग से लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लीज़ जमीन का खेती लेकर लोग। तो उन युवाओं को ये संदेश है कि अगर आपके पास खेत है तो आप खेती बाड़ी कीजिए, जिससे आपका परिवार का भरण पोषण हो पाएगा और समाज में आपको एक अच्छा नजर से भी देखा जाएगा। और जिनके पास अगर जमीन नहीं है खेती बाड़ी के लिए, तो लीज का जमीन लेकर के खेती बाड़ी करे, उनका और उनके परिवार का
1: चले, कुछ
0: परिवार का हाँ जीवन उपार्जन चले। तो सोनो जी, आपने इतना बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोता भाई को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
1: जोहार जोहार।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो अभी हम लोगों ने सुना जरूरी संदेश, और जरूरी संदेश के पहले हम लोगों ने सुन रहे थे भेंट वार्ता योजनाबद्ध तरीके से लतेदार सब्जियों की खेती के बारे में, और जानकारी दे रहे थे सोनू कुमार जो कि एक युवा किसान थे नवादा गांव के कटकमदाग प्रखंड, और इनसे बातचीत कर रहे थे यानी कि मैं मुकेश कुमार। तो देखिए कितना बढ़िया इन्होंने जानकारी दिया कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले मिट्टी का इन्होंने उपचार किया गोबर खाद के माध्यम से, और एक एकड़ का भी अगर हमारे पास खेत है, 3 से 4 ट्रैक्टर हम डालते हैं और 3 जुताई करते हैं तो हमारा वो मिट्टी तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है उन्नत किस्म का बीज का, क्योंकि एक कहावत भी है गांव के भाषा में कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, क्योंकि अगर थोड़ा सा पैसा अगर हम लगा देते हैं उसमें तो उसका देखिए जो बीज होता है उन्नत किस्म का बीज का, उसका बढ़वार भी बढ़िया होता है, रंग रूप भी बढ़िया होता है, बाजार में जब वो जाएगा तो वो तुरंत बिक जाएगा। अगर हमारे जो माल जब उत्पादन हो जाता है तो उसे ग्रेडिंग भी अगर हम कर देते हैं तो उससे भी हमारा माल का जो है उसका अच्छा एक दाम मिल जाता है। फसल चक्र का इन्होंने प्रयोग किया और एक बोलिए कि योजनाबद्ध तरीके से ये काम करते हैं और अपने परिवार का जीविका उपार्जन करते हैं। और एक किसान जो है उनका जो खेत में जो भी रहता है समान फसल रहता है, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक आता है, और जब हम जैसा कि है जो किसान है उसका प्यारा रंग है हरा रंग, तो जय जवान जय किसान। और यही बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है एक प्यारा सा गीत, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी हम लोगों ने सुना प्यारा सा गीत, अब बढ़ते हैं आगे जानकारी तरफ। और अब समय हो चुका है मौसम का जानकारी और बाजार भाव का। और आज का बाजार भाव में है लाल आलू 20 से 25 रुपए किलो, सफेद आलू 12 से 15 रुपए किलो, प्याज 10 से 15 रुपए किलो, फूलगोभी 40 से 45 रुपए किलो, पत्ता गोभी 30 से 40 रुपए किलो, पटल 30 से 40 रुपए किलो, भिंडी 25 से 30 रुपए किलो, नेनुआ 25 से 30 रुपए किलो, कद्दू 15 से 20 रुपए किलो, हरा मिर्च 100 से 110 रुपए किलो, शिमला मिर्च 50 से 60 रुपए किलो, गाजर 30 से 40 रुपए किलो, बीट 30 से 40 रुपए किलो, बीन 30 से 40 रुपए किलो, मूली 15 से 20 रुपए किलो, अदरक 100 से 110 रुपए प्रति किलो, धनिया पत्ता 60 से 70 रुपए प्रति किलो, खीरा 30 से 40 रुपए किलो, टमाटर 20 से 25 रुपए किलो, लाल साग और पालक साग 20 से 25 रुपए किलो। और आज का मौसम का जो जानकारी है वो है, आज का तापमान रहा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता रहा 29%। और कल का जो पूर्वानुमान है मौसम का जानकारी में, कल का तापमान रहने का संभावना है अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 28%। श्रोताओं, जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना मौसम का जानकारी और बाजार भाव, अब बढ़ते हैं आगे समापन चर्चा की ओर। और समापन चर्चा में आज हम लाए हुए हैं कृषि में हरी खाद एक जो क्यों जरूरी है उसके बारे में। तो कृषि में हरी खाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक विधि है जिसके तहत तेजी से बढ़ने वाली जो दलहनी फसल होता है जैसा कि ढेंचा, सन, लोबिया, वो खेत में उगाते हैं हम लोग और फूल आने के पहले जो हल से है उसको दो तीन बार उसको चला देते हैं। इससे यह होता है कि मिट्टी का जो सेहत है वो सुधरता है और कृषि का लागत में इसमें कमी आता है। और ये देखिए जैविक तरीका बहुत प्रसिद्ध और हो चुका है ये। और इससे फायदा क्या होता है खेत को, इससे फायदा होता है प्राकृतिक नाइट्रोजन जो है खेत को मिलता है जिससे जो हमारा दलहनी फसल है या और सब जो फसल है वो अच्छा से बढ़ता है, फूलता है। और जो मृदा की यानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बनी हुई रहती है। बहुत से किसान भाई जैसा कि जानते हैं गोबर खाद या किचुआ खाद का जब प्रयोग इसमें करते हैं तो उससे भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है जो है वो बनी रहती है। मिट्टी में जल जो धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें सुधार आती है, यानी कम ही पानी में हमारा जो है वो नमी मिट्टी में मिल जाएगा। खरपतवार में इसमें नियंत्रण होता है, मिट्टी का कटाव को ये रोकता है और जो मिट्टी का जो है स्वास्थ्य में ये सुधार करता है। तो ये है रहा जो हरी खाद का क्या महत्व है, बाजार भाव के भी हम लोगों ने जानकारी दी है। और आशा करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री हरिकृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। पाकुड़ पहुंचे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने व्यवहार न्यायालय और मंडल कारा का निरीक्षण कर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और बंदियों से बातचीत की। उन्होंने मंडल कारा में हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी और पोक्सो कानून पर लोगों को जागरूक किया गया। हजारीबाग के बरही प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कम वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए आकस्मिक योजना और वैकल्पिक फसलों पर चर्चा हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरीय वैज्ञानिक कृष्ण प्रकाश ने किसानों को कम अवधि वाली फसलों की खेती अपनाने की जानकारी दी। जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में प्रस्तावित भारतीय पर्वत निरंतरता एवं सुरक्षा अधिनियम 2026 पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने पर्वतों को जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला बताया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

बहनों आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम अंगना, और बहनों आज का हमारा विषय है समाज के उत्थान में आकाशवाणी की भूमिका। बहनों आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं बल्कि देश की आवाज, संस्कृति की पहचान और जन जागरूकता का मजबूत माध्यम रही है। पिछले 90 वर्षों से आकाशवाणी ने गांव गांव और घर घर तक जानकारी, शिक्षा, मनोरंजन पहुंचाने का काम किया है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसने दशकों से समाज को जोड़ने, जागरूक करने और आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह समाज के उत्थान का एक मजबूत आधार बना। गांव से लेकर शहरों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति से जुड़ी जानकारी आकाशवाणी ने हर घर तक पहुंचाई। जब टीवी और इंटरनेट हर जगह उपलब्ध नहीं थे तब आकाशवाणी ही लोगों की आवाज और सहारा बनी। किसानों के लिए खेती से जुड़ी नई तकनीकें, उनकी जानकारियां, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, इन सब के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम आकाशवाणी ने लगातार निभाया है। और बहनों प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में भी आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ ही लोक संगीत, लोक भाषा और भारतीय संस्कृति को सहेजने में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और जन सेवा की भावना के साथ लोगों के दिलों में खास स्थान बनाए हुए है। सच ही कहा गया है, रेडियो केवल आवाज नहीं समाज की धड़कन है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: चल रहा है कार्यक्रम अंगना और आपने अभी कुछ संदेश सुने। मैंने हम कार्यक्रम में बात करते हैं आपकी, आपके घर परिवार की। तो चलिए अब कार्यक्रम में एक बार फिर आज आपको सुनवा रहे हैं बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार हैं अंजू सिंह।
2: बच्चे के विकास में परिवार की भूमिका। किसी बच्चे का बाल्यकाल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। यह बाल्यावस्था होता है जब वह तेजी से सीखता है, उसकी ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है और वह वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीखता है। बच्चों का समाजीकरण और उसका सामाजिक विकास साथ साथ होते रहता है जो उसके अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरी ओर परिवार बच्चों के लिए आरंभिक पाठशाला मानी गई है। कहा जाता है कि विचार और भाषा का नींव इसी समय रखा जाता है, अतः बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका बहुत ही अहम है। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण है कि विकास की इस अवस्था में परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था से पूर्व शैशव अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके दौरान उसमें अधिक पोषण, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। यहाँ बच्चों के लिए माँ का स्नेह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह उनके भावनात्मक सुरक्षा विकास को प्रदान करता है। परिवार के लिए अन्य सदस्यों का स्नेह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उनके क्रियात्मक विकास की एक नींव डालती है जिसमें उसे अन्य चीज का सीखना उचित पूर्ण रूप से हो पाता है। इसके बाद आने वाली अवस्था जो होती है वह बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में पहुंचने से बच्चा का सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और उनके समाज के प्रति उनकी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इस अवधि में उनकी भाषा का विकास अधिक तेजी से होते रहता है। इससे वह दूसरे लोगों से संवाद करना स्पष्ट करता है। ज्ञान इंद्रियां उनकी बहुत ही तीव्र गति से काम करने लगती हैं। परस्पर बातचीत करना, संपर्क करना, वातावरण से अधिक जानकारी प्राप्त करना उनका लालसा हो जाता है। जब बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तो वातावरण उनके लिए अपरिचित नहीं होता है। वह मिलना जुलना सबसे बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभव सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ साथ उनको बहुत अच्छा अनुभूति देता है। इस उम्र में परिवार के सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों का भी प्रेम भाव बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बात पर कहना कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कैसा बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। पता है कि अनुशासन बच्चों के लिए अनियंत्रण एक मार्ग है। यह परिवार के बीच संभव है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है कि बाल्यावस्था तथा 6 से 12 वर्ष की अवस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से मध्य होती है। इस दौरान बौद्धिक विकास धीमी लेकिन निरंतर होती रहती है। इस उम्र में वह बच्चा सोचना, तार्किक ढंग से किसी निर्णय पर पहुंचना आरंभ कर देता है। वह परिवार में जिस प्रकार का आचरण व्यवहार देखता है वह उसी प्रकार का सीखता है। चूंकि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है, बच्चे अलग अलग चीज सीखते हैं। सभी सदस्यों का ज्ञान, बौद्धिक विकास स्तर सब अलग अलग होता है। इससे वह सभी कुछ कुछ न कुछ ग्रहण करते रहता है, उसे ज्ञान अर्जित करते रहता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों से प्राप्त की हुई ज्ञान को वह अपने सहपाठियों के साथ व्यक्त करता है। दूसरी ओर परिवार के सदस्यों के बीच का लाड, प्यार, अपनापन, सुरक्षा, भावनात्मक सामाजिक विकास की दिशा तय करती है। जिस बच्चे को यह प्यार और अपनापन नहीं मिल पाता है वह बच्चा सामाजिक विकास से सही ढंग से वह विकसित नहीं हो पाता है। वह चिड़चिड़ा एवं एकाकी हो जाता है। यह उसके भावी जीवन के लिए हानिकारक होता है। सामाजिक असंतुलन इस स्थिति के कारण वातावरण में अविश्वास की भावना को व्यक्त करता है। यह स्थिति उसके शैक्षिक विकास को भी बहुत बड़ी बाधा पहुंचाता है। किशोरावस्था में पहुंचने से बच्चों की सोचने समझने की जिज्ञासा जो होती है बहुत ही तेजी से विकसित होती रहती है। उसमें बच्चा बहुत अधिक क्रोधित होते रहता है। किसी भी बात पर वह बहुत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। भावनात्मक रूप से वह स्वयं को असुरक्षित समझता है। यदि उन्हें इस उम्र में सुरक्षा की भावना ना दी जाए तो वह इस आयु वर्ग में पहुंचने से जिज्ञासा, कुतूहल, आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो उठती है। वह अधिक क्रोधित किसी भी बात को लेकर वह असामान्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है। वह भावनात्मक रूप से स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। यदि उन्हें इस समय सुरक्षा की भावना ना दी जाए तो वह उद्दंड और असामाजिक हो जाता है। अतः ऐसे परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्य ही उन्हें प्यार, विश्वास और समर्थ दे, जिससे उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए और वह स्वयं को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर माने। परिवार में माता पिता और अन्य सदस्यों को भी उनके साथ मित्रता की भावना रखनी चाहिए। भारत में आदिकाल से ही संयुक्त परिवार की परंपरा चली है, जहां बच्चों का उनके सभी सगे संबंधियों का साथ मिलता है, जो उसके व्यवहार को लचीला और व्यवहारिक कुशलता बनाता है। यह उनके भावी जीवन शिक्षा के क्षेत्र में सफल सिद्ध होते हैं। परिवार की जिस समुदाय विशेष से संबंध रखता है, उसके साथ विशेष व्यवहार, विश्वास और परंपराएं होती हैं, जो भारत जैसे देश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चों के परिवार के बीच होना चाहिए। न केवल उसके समुदाय बल्कि संबंधी परिवार की पहचान होती है, जिससे बच्चों में आत्मगौरव की भावना आती है। दुर्भाग्यवश आज अधिकांश परिवार टूटते हैं, यहाँ यह प्रवृत्ति बढ़ गई है। एक परिवार में माता पिता के साथ तो बच्चों को मिलता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों से वह दूर हो जाते हैं, जो उनके सामाजिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से एक बाधा सिद्ध करती है। वैसे ही बच्चे जिन परिवार में रहने का सुख नहीं मिल पाता है, उनमें शारीरिक वृद्धि और बौद्धिक विकास का स्तर सामान्य रूप से तुलनात्मक में कम हो जाती है, असामान्य हो जाती है। सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध ज्ञान, अनुभव, विश्वास और धारणाओं पर परंपरागत की सीढ़ी चलती रहे। यह कार्य बच्चे में परिवार में रहकर ही हो सकती है। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है कि बच्चे के जीवन में परिवार की भूमिका अहम होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में जिस प्रकार बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशव अवस्था, ये सारे अवस्था जो होती है महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका अहम है, हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से और अधिक अच्छे तरह से होता है। जैसे कि हर एक परिवार के जो लोग रहते हैं उनका सोचने, समझने और उनका तार्किक शक्ति अलग अलग होता है। वह बच्चे उस चीज को सीखते हैं और वह अपने ऊपर वह अप्लाई करते हैं, तो इसका कहना है कि वह बच्चे संयुक्त परिवार में अधिक अच्छे से रह पाएंगे।
1: बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका, ये वार्ता आप सुन रहे थे। वार्ताकार थी अंजू सिंह। और अब कार्यक्रम अंगना में एक और गाना।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

सपने फिल्म सलियावा ये गाना आपने सुना हिमा सर देसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और अब सुना रहे हैं आपको फिल्म संगीत प्रोग्राम में अगला गाना आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाजों में। फिल्म का नाम है ताल।

यह कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 और 41 सेकेंड। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल प्रसारण होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 मई से 2 सप्ताह तक अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं।
5: वर्तमान 2024 का मतदाता सूची में जिनकी मतदाता का नाम है उनका SAR तथा 2003 का मतदाता सूची का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है। SAR प्रोसेस में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतदाता का मैपिंग हो गया। सभी अनमैप्ड मतदाता का सूची 23 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप होगा तो तुरंत आपका बीएलओ से संपर्क करते हुए उनका नाम का मैप करेंगे, सुनिश्चित करें।
4: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में

0: अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि झारखंड का समावेशी विकास मॉडल अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अगले चरणों में राज्य के हजारों अति गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका है। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में शोध, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
1: राजकीय विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में। राज्य सरकार की वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए हैं, उन सब के बारे में बताना है, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हो सके, वो कम्पीट कर सके देश के अन्य अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कंपेरिजन में।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है तथा सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इधर हजारीबाग में 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से नाराज हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2: शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम DM साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठे मिलेंगे, उनको ये भी बोल के आया।
0: जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्वत भारत की पहली आधारभूत संरचना है और इनके बिना नदियों तथा पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं है।
3: आज का दिन जैव विविधता दिवस है। पहाड़ और नदियाँ दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियाँ करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। और आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, पहाड़ों के सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये सम्मेलन आज उसी कानून बनाने के प्रारूप पर विचार करेगा।
0: हीट वेव को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के मामले कम हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह तैयार है।

0: थोड़ा टेम्परेचर निश्चित रूप से ज्यादा था। अभी जो देख रहे हैं उसमें हीट टेस्टों वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात है उससे संबंधित जो भी जिस चीज की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई, इसलिए मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से तीन घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची के धुरवा स्थित बंगीय सांस्कृतिक परिषद विद्यालय में 15 दिवसीय रांची जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में मलखंब, योग, खो खो, कबड्डी, आत्यापात्य और बैडमिंटन के बेसिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जापान में होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने इसे राज्य की हॉकी परंपरा और सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुद्रांश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: देवघर में बच्चों को खेल की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम निर्माण की ओर गति बढ़ गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध करने और सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराए तो देवघर में आधुनिक स्टेडियम का काम शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अपने मद का पूरा राशि देने की बात कही है।
2: 500 करोड़ का जो है बड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाऊंगा जिसमें फुटबॉल खेलेंगे, उसी में सांसद निधि का पूरा उपयोग आप ही के विधानसभा में।
1: वहीं दूसरी तरफ देवघर में गर्मी में पेयजल और बिजली की किल्लत न हो इसके लिए नगर निगम बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेयर रवि महतो ने कहा कि पंप हाउस की मरम्मत और पुनासी डैम से जलाशय की व्यवस्था देवघर में की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
3: पानी की समस्या तभी दूर हो सकता है जब पुनासी जलाशय पूर्ण तरह से जो है चालू होगा। उसके कार्य जो धीमी थी उसको कार्य को हम तेजी में कर दिए हैं। एनएससी का कुछ प्रॉब्लम था, एक मिल चुका है, एनएससी नहीं मिला उसको लेकर के भी हम लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी जो सप्लाई पानी चल रहा है हमारे नदी से उसमें हम समय समय पर पानी पुनासी से छोड़वा करके नदी में पानी ला करके शहर में जलापूर्ति कर रहे हैं। और बिजली को लेकर के मेगा पावर जो कम मिल रही थी उसमें भी हम लोग जीएम से सीएमडी से बात करके उसको भी अभी फिलहाल वर्तमान में हम पहले से ठीक कर दिए हैं। बिजली बिल का काफी गड़बड़ी का शिकायतें आ रही थी उसे केंद्र के माध्यम

0: से उसका भी समाधान हमने किया और कर भी रहे हैं। हमारे पास संसाधन की थोड़ी कमी है नगर निगम में, उस जितनी संसाधन है उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे शहर कैसे साफ सफाई रहे। हमारा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सभी जगह से हमारे यहाँ पूजा करने के लिए व्यक्ति आते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण में बाबा का दर्शन करें।
1: वहीं देवघर को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। NHI के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि देवघर बासुकीनाथ और गिरिडीह के मधुबन सहित कई धार्मिक स्थलों को एक सर्किट के रूप से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ीकरण सहित कई तरह के कनेक्टिविटी पर विशेष काम किए जा रहे हैं।
2: अभी इंडिया में हम लोग रिलीजन सर्किट बना रहे हैं, ये वो रूट्स होंगे जिसपे कि जो पवित्र धाम है हमारे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब का जो पवित्र तीर्थ स्थान है उस सब को भी कनेक्ट करने की बात चल रही है, जिसके लिए हमारा NHI भी उसमें सहयोग दे रहा है। जैसे देवघर बासुकीनाथ है, ये बाबा धाम और बाबा बासुकीनाथ इन दोनों जगहों को जोड़ता है। इसके अलावा बिहार में भी बौद्ध सर्किट बन रहा है, जिससे राजगीर और सारनाथ वगैरह सब जुड़ रहे हैं। इसी तरह से पारसनाथ को भी जोड़ने का भविष्य में योजना बनाई जा रही है। अभी बासुकीनाथ धाम में कांवड़िया पथ अलग से बना रहे हैं, जो 3.5 मीटर चौड़ी है और बासुकीनाथ देवघर से सटाकर बनाया जा रहा है।
1: भीषण गर्मी के बावजूद देवघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जारी है। प्रशासन ने मैनाथ धाम, बासुकीनाथ, नंदन पहाड़ और नौलखा मंदिर में पेयजल शेड और मेडिकल कैंप की व्यवस्था कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। संथाल में इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उन्हें बेहतर सुविधा मिले इस ओर जिला प्रशासन लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
3: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: energy.
1: Baby, go best, pasanna.
2: मिशेल दादलानी, शलमली खोलगड़े और इशिता की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म था सुल्तान। और अब अगला गाना सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में, फिल्म का नाम है 30 मार खान।

0: इधर फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 पेश है खेल पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन और संकलन राजीव कुमार और मानिक चक्रवर्ती का है, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार।
1: जिस मिट्टी में पसीना गिरता है वहीं से चैंपियन निकलते हैं, जिस दिल में जुनून जलता है वही इतिहास बदलते हैं।
2: हवा के भरोसे मत उड़िए, चट्टाने तूफानों से बना करती हैं। खिलाड़ी वो नहीं जो सिर्फ जीत जाए, खिलाड़ी तो वो है जो गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से शाम के इस जोशीले सफर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, जहां खेल सिर्फ मुकाबला नहीं एक जुनून है, एक सपना है और जिंदगी को जीतने का सबसे बड़ा हौसला भी है।
1: मैदान की मिट्टी से उठती मेहनत की खुशबू, दर्शकों की तालियों की गूंज और खिलाड़ियों के हौसलों की उड़ान लेकर हम हाजिर हैं खेल पत्रिका का नया अंग जिसे खिलाड़ी कहते हैं
2: खेलेंगे शान से।
3: खिलाड़ी मित्रों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैदान से सीखिए, क्योंकि खेल हमें सिखाता है गिरना, संभलना, लड़ना और फिर जीत कर लौटना।
1: इस शानदार सफर में होंगी खेल जगत की खास बातें, मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट, संघर्ष से निकली हर जीत की कहानी, खिलाड़ियों के लिए आज का खेल मंत्र, खेल टिप्स सुनो खिलाड़ियों और खेल अपडेट्स। तो हो जाइए तैयार जोश, जुनून और जीत के इस सफर के लिए। मैं हूँ मानिक चक्रवर्ती
3: और मैं हूँ आपका साथी राजीव कुमार।
1: नमस्कार, शुरू हुआ खेलेंगे शाम से। सबसे पहला सेगमेंट वो है ग्राउंड रिपोर्ट।

0: खिलाड़ी मित्रों, 16 से 24 मई तक हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रांगण में 9 दिवसीय ऑल इंडिया शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कई खेल अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारीबाग के खिलाड़ियों संग कई शहरों से खिलाड़ी इसमें भाग लेने आए हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे सहयोगी माणिक चक्रवर्ती की रिपोर्ट सीधे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल से।
1: मल्टीपर्पज हॉल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के प्रांगण में मैं पहुंच चुका हूं, तो सीधे हम बात करते हैं
2: मनमीत अकेला, हजारीबाग जिला शतरंज संघ के हम सचिव हैं।
1: बहुत बहुत स्वागत खेलेंगे सांसद के इस कार्यक्रम में,
2: और जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन सबका स्वागत। आज यह जो हजारीबाग में हम कर रहे हैं सेकेंड राउंड, आज 21 तारीख से 24 तारीख तक ऑल इंडिया फेडरेटिंग टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जिसमें पूरे भारत भर से 400 प्लेयर खेलने वाले हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हजारीबाग में इतने बड़े बड़े आयोजन हम कर पा रहे हैं, जिसमें पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पूरे देश भर के हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो आमंत्रित हैं, जिसमें आपको बता दें कि सबसे छोटे जो 6 साल के बच्चे खेल रहे हैं और सबसे बड़े बुजुर्ग जो है 73 साल के बुजुर्ग खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारे भी तमिलनाडु से, केरला से, उधर त्रिपुरा से और उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, सभी से लोग आए हुए हैं। लगभग 13 स्टेट से यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं। एक और एक नई सबसे विशेष है, हमारा एक कोमोयो नाम का एक प्लेयर है जो जिम्बाब्वे का है।

0: वो दूसरे देश का प्लेयर है, पंजाब में रहकर वो पढ़ाई करता है, वो भी हमारे यहाँ खेल रहा है, वो हमारा स्टेट गेस्ट के रूप में हम उनको माने हैं और बहुत अच्छा से स्वागत करके उनके साथ बच्चे खेल रहे हैं और वह भी कुमयो जो है बहुत ही इंजॉय ले रहा है हजारीबाग का। 16 मई से हमारा यह मैच शुरू हुआ और हजारीबाग में चौथी बार हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट हम करवा पा रहे हैं। जो आज कर्नाटक और तमिलनाडु और केरला से जो प्लेयर और आ रहे हैं उनको 30 से 35 हजार रूपए खर्च हो रहा है, लेकिन हम हजारीबाग में मैच कराने से हजारीबाग प्लेयर सिर्फ 1,000 और 1,500 में हम यहाँ पूरा टूर्नामेंट का उनको हम दे रहे हैं और उनको रेटिंग खुलवा रहे हैं। हम यहाँ के प्लेयर को और यहाँ के खिलाड़ी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ये माइंड गेम है और मजे से खेलिए, जितना आप शतरंज खेलेंगे उतने ही आप सक्सेस करेंगे, क्योंकि शतरंज ही एक ऐसा खेल है जो कभी हारता जीतता कोई नहीं है, इसमें सीखता है, हर चाल हमें एक सिखाता है कि हमसे क्या गलती हो गई
1: क्या बात।
0: और इसलिए ये चाल जो है दिमागी खेल है कि हजारीबाग एक शतरंज का हब बन चुका है। हम यही ग्राउंड में हम 1300 प्लेयर हजारीबाग 1300 का शतरंज प्लेयर हम यहाँ पर खिला चुके हैं, तो आप सबका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, आगे इससे भी बड़ा हम जीएम टूर्नामेंट करा सके और यहाँ से आईएम और जीएम हम निकालें, ऐसा मेरा उद्देश्य है और ऐसा है मेरा संकल्प। एकदम खेलेंगे शाम से
1: और जीतेंगे
0: शाम से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेरा नाम अक्षय कुमार मिश्रा है और मैं यही हजारीबाग का चेस प्लेयर हूँ। हम नमन विद्या से हैं। यहाँ कम से कम हम 7-8 टूर्नामेंट खेल चुके हैं, मेरा रेटिंग भी एक बार खुल चुका है।
3: HDCA ऑल इंडिया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टूर्नामेंट था
1: और ये
3: इस कम्पेयर टू दैट वो थोड़ा सा इजी है, बिकॉज इसमें बिलो 1800 रेटेड ही आ रहे हैं और उसमें जो था फोर्थ HDCA ऑल इंडिया उसमें जो हाइएस्ट रेटिंग था वो 2300 था, फिर 2300, 2200 और मतलब 2000 से ज्यादा रेटिंग था।
1: इस बार इजी।
3: हाँ, इस बार ये। मेरा नाम अर्नव सिंह, खेलेंगे शान से, जीतेंगे शान से।
4: जीवन में शतरंज की बहुत महत्ता है, तो बुद्धि को कुशाग्र बनाना और विवेक के साथ, अनुशासन के साथ, समयबद्ध तरीके से यह कार्य करने से क्या होता है कि बाल मन जो है वो पूरी तरह से तैयार होता है आने वाले जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए भी। तो इसी कारण से चेस या शतरंज जो है बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही जगहों से खिलाड़ी आगे निकलते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं।
5: मेरा अदिति कुमार आए हैं, हम बडम बाजार से, ये 6 साल का है।
1: अच्छा, 6 साल के हैं, बस मैच शुरू होने वाला है।
5: यस।
1: इस वक्त किसकी धक-धक ज्यादा हो रही है?
5: बाबू बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है।
6: आरव कुमार, खेलेंगे शाम से, जीतेंगे शाम।
1: बिल्कुल। और इधर मंच पर शुरुआत हो चुकी है, सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा है।
7: तो 64 खानों में पूरी सृष्टि समा जाती है, अनुशासन के साथ वहाँ पर लग जाता है। तो आप सब एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, आप इतना जो परिश्रम कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित तौर पर फल आएगा।
1: और जिम्बाब्वे से आपका आना हुआ, कोमियो, welcome.
8: Thank you very much. I am a Zimbabwean chess player right here in Hazaribagh for the 4th HDCA tournament, and I would like to say that I'm really, really excited to be here and to meet all the young players around here. For me personally, I'm really feeling motivated and encouraged to play and win some games today. I think that's the feeling that's all around with all the other players. I think it's going to be a very competitive day. I think it's going to be a very good opportunity for them to play and get some ratings here.
1: कहते रहिए, तब तक खेलेंगे शान से, जीतेंगे शान से।

0: हर मेडल के पीछे छुपी होती है कई रातों की मेहनत, कई हारों का दर्द और कभी न हार मानने का जज्बा। पेश है अगला सेगमेंट, हर जीत की कहानी, जहां आप सुनेंगे उस कराटेकार की दास्तान जिन्होंने हालात से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई।
1: गिरकर संभलना ही असली पहचान बन गई, पापा के सपनों में मेरी उड़ान बन गई, मुश्किलों ने रोका बहुत इस सफर में, मगर हर चोट आज मेरी मुस्कान बन गई। मेरा नाम प्रत्यक्षा प्रिया, पापा मेरे जो है उनके बारे में हम सबसे पहले बताना चाहते हैं, क्योंकि वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे को आज कराटे में अगर हम है तो उनके वजह से है। मेरे पापा का नाम लेट प्रभाकर चतुर्वेदी, बेल्ट 5th डन थे। बचपन से ही कराटे में तो क्योंकि खून ही वही था तो कराटे में मेरे को इंटरेस्ट तो था, लेकिन साथ ही साथ वो जो है सपोर्ट हुआ मम्मी पापा दोनों लोगों का, और तरीके से जो है वो आगे चल के आज जो मकाम पर जिस भी जगह पर हम हैं तो उनके वजह से, मम्मी पापा के वजह से ही। 18 साल का उम्र था मेरा और आज से लगभग 10 साल पहले 2016 में मेरे फादर डेथ किए, और बस उनका याद और उनका सिखाने का जो कला है बस वही मेरे साथ अभी तक चला है और आगे भी चलता रहे। जितने भी मेरे यहाँ पर सीनियर्स हैं पापा के स्टूडेंट्स, वो लोग भी पूरा हेल्प किए हमको यहाँ तक पहुँचने में। आप अगर कह सकते हैं तो पूरा एनवायरमेंट मेरे को ऐसा मिला कि हम आज यहाँ पर हैं। मेरे फादर का नाम बहुत ज्यादा था इस क्षेत्र में, तो उनका नाम को जिंदा रखना ही मेरा मेन उद्देश्य था। बच्चे जो कि मेरे से मिल पाए और जो नहीं मिल पाए वो भी माध्यम से, जैसे फेसबुक हो गया, कहीं और माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ टेक्निक बता करके वो चीज को कम समय में भी उस चीज को सिखा सके। शुरुआती दौर था उस समय सबसे छोटे और लड़की में हम ही थे, धीरे धीरे करके ये जितना भी प्रक्रिया है बढ़ते चला गया। जब ब्लैक बेल्ट हुआ तो फिर एक और दिमाग में आता है कि अब हम मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो मेरे ही घर पर जस्ट बगल में रहती थी वहां से मेरा ट्रेनिंग देना जी वहाँ से शुरुआत हुआ, और उस तरीके से करते करते जो है अभी एनटीपीसी के द्वारा हम बड़का गांव में हो गया, चाक में हो गया, पद्मा में हो गया, सरैया में हो गया, कटकमसांडनी में हो गया, हजारीबाग में, तो कई जगह। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग चलते रहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करवाया गया था जिसमें काफी लड़कियां भाग ली थी। वो नगर निगम के द्वारा ये पहल था कि लड़कियों को सशक्त बनाने का, जब आदित्य रंजन सर SDO थे यहाँ पर, तो वो भी मेरे को चूज करके वहाँ पर करवाया गया। तो उसमें भी हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो कितने भी अगर 10 बच्चे भी बच्चियां भी सीख रही है यहाँ पर तो वो मजबूत बन रही है, और वो 10 बच्चियां मजबूत बनेंगी तभी आगे का हम लोग का कल मजबूत बनेगा। तो मेरा मेडल सिर्फ एक स्टेट का है क्योंकि 2013 में मेरा पैर जो है वो डैमेज हो गया था, लेकिन आपको बताते हुए हमको इस बात पे खुशी हो रही है कि आज तक मेरे बच्चे अगर 5 गए हैं नेशनल में, 10 गए हैं, 20 गए हैं, एक एक बच्चे को मेडल मिला है। तो मेरा उपलब्धि मेरे बच्चे ही है। मेरा सपना ये है कि हर स्कूल में प्रॉपर सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर के सब बच्चों को, बच्चियों को, जिसमें कि गुड टच बैड टच के बारे में भी बताएं। बड़े बच्चों के लिए 50 ऐसा सेल्फ डिफेंस का टेक्निक हम लोग तैयार किए हैं, छोटे बच्चों के लिए 10 ऐसा टेक्निक तैयार किए हैं। दूसरा जो है समाज, और अगर आप बात करें पेरेंट्स लोग का, तो दोनों का हमको सहयोग बराबर का मिला है, और इस चीज में अगर ये दोनों का सहयोग नहीं मिलता तो अभी मेरे को आगे चलना भी मुश्किल हो जाता। गरीबाग के लोग भी अच्छे हैं, हाँ ये है कि कुछ जानकारी का अभाव है। अगर वो जानकारी और अच्छे तरीके से किसी माध्यम से, आपके माध्यम से या फिर किसी माध्यम से अगर आता है, तो वो और बेहतर तरीके से लोगों के बीच जाएगा और लोग जो है मजबूत हो सकेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ जिनका हम 1 रुपया अभी तक कोई फी नहीं है जी। मेरा मेन उद्देश्य है बच्चों को सशक्त बनाना और पापा का नाम को रखे रहना। तो मेरा सरकार से अपेक्षा है जिस तरीके से आप मैया सम्मान और भी बहुत कुछ योजना चलाते हैं, उस तरीके से आप एक कराटे जो टीचर है उसको अच्छा एक सैलरी दीजिए, उसको टेस्ट लीजिए, जो उस चीज में सक्षम है उसको ही लाइए ताकि हम लोग और मन से इस चीज को आगे बढ़ा सके। आप देखिए हर समय सीखने का समय होता है, लोग चाहे जीतते हैं या सीखते हैं, बस यही है। तो आप जरूर उसमें कोशिश करिए, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है और तभी आपका नाम बनेगा।
2: प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षा ने बहुत सारी प्रत्यक्ष रूप से बात कह दी है
1: जी।
2: और हम चाहते हैं कि आपका जो डोजो है, आपका जो सपना है, एक मिसाल है और एक मील का पत्थर साबित हो रही है जो उस सफर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे।
1: खेलेंगे शान से को भी बहुत बहुत, जितने भी श्रोताए हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग,
2: फिर मिलते हैं
1: जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और अब टीन एज खिलाड़ियों का अपना सेगमेंट,
0: आज का खेल मंत्र। खेल सिर्फ शरीर नहीं सोच को भी मजबूत बनाता है। हारने वाला कभी खत्म नहीं होता और जीतने वाला कभी रुकता नहीं, थमता नहीं।
3: प्रतिभा आपको शुरुआत तो दिलवाती है लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है।
0: तो ये था आज का खेल मंत्र। और अब सीनियर खिलाड़ियों का सेगमेंट,
3: सुनो खिलाड़ियों।
0: सुनो खिलाड़ियों, खिलाड़ी सिर्फ मैदान में नहीं जीतते, वे अपने भीतर के डर को हराकर जीतते हैं।
3: सुनो खिलाड़ियों, अगर थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने सपनों से कभी मत हारो।
0: सुनो खिलाड़ियों, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर मैदान की दुनिया में आओ, क्योंकि असली आत्मविश्वास खुले मैदान में ही प्राप्त होता है।
3: और आखिर में हर खिलाड़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते।
0: बिल्कुल। सुनो खिलाड़ियों, ये कहने अब हम आएंगे अगले शुक्रवार।
4: उड़ान भर ले परिंदे, दुनिया तेरी खोज ले।
3: और ये रहा आपका अगला सेगमेंट,
0: खेल टिप्स। अभ्यास की आदत बनाइए, लगातार मेहनत ही खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है।
3: वार्म अप और स्ट्रेचिंग है बहुत जरूरी। खेल सीधे मत शुरू कीजिए, शरीर को थोड़ा तैयार कीजिए जो कई चोटों से आपको बचाएगा।
0: हार के बाद रुकिए मत, मैदान छोड़ना नहीं बल्कि और ज्यादा मेहनत करना है, ये आप सीखिए।
3: समय का सम्मान करें, जो खिलाड़ी इसकी कीमत समझता है ना, वो आगे चलकर बड़ा नाम बनता है।
0: कोच की बात ध्यान से सुनिए, अनुभव हमेशा खिलाड़ी को सही दिशा देता है।
3: गुस्से पर नियंत्रण रखिए, मैदान में धैर्य और शांत दिमाग आपको बेहतर खिलाड़ी बनाता है।
0: तो ये था खिलाड़ियों के लिए हमारा खेल टिप्स।
3: समय हुआ खेल जगत की ताजा हलचलों से रूबरू होने का, जो है
0: खेल अपडेट्स।
5: सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बड़ी अपडेट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पहली बार इसमें 48 टीमें खेलेंगी, जबकि पहले 32 टीमें खेलती थी। यह टूर्नामेंट 3 देशों में आयोजित होगा। 2026 इंडियन प्रीमियर लीग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। इंग्लैंड महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पहले महिला 2020 मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। एलिस कैप्सी की शानदार पारी चर्चा में रही। 16 मई को गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। आप खेलते रहिए, सीखते रहिए
0: और अपने माता पिता, अपने शहर और अपने देश का नाम निरंतर रोशन करते रहे।
3: जिंदा अगर जुनून है तो जीत भी एक दिन जरूर मिलेगी,
0: और अगर मेहनत सच्ची है तो मैदान की हर तालियां एक दिन आपके लिए जरूर बजेगी।
3: तो दोस्तों, खेलेंगे शान से के आज के इस अंक से अब चाहेंगे इजाजत,
0: लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें भी सलाम करें। मैदान में ऐसा खेल दिखाओ कि जीत भी तुम्हारे नाम करे।
3: नई ऊर्जा, नए हौसलों और खेल के नए जुनून के साथ
0: खेलिए दिल से, जीतिए शान से। राजीव कुमार
3: और माणिक चक्रवर्ती का कीजिए स्वीकार। नमस्कार।
6: खेलेंगे शान से, खेल पत्रिका पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।

कुमार सानू की आवाज में आशिकी फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम आपकी चाहत को लेकर।

विश्वात्मा फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना साधना सरगम की आवाज में, और सुनना चाहा था आप सभी ने जहां मस्जिद रोड हजारीबाग से आप हैं मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्कीस फातमा, कनीज फातमा, यास्मीन फातमा, शहनाज फातमा, और ये अगला खत है बनासो से आप हैं राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान, सचिन चौहान। दोस्तों म्यूजिक एक ऐसा साथी है जो हर मूड को और भी खूबसूरत बना देता है, कभी यादों में ले जाता है तो कभी किसी खास इंसान की याद दिला देता है। चलिए अब सुनवाते हैं आपको अब प्रोग्राम का अगला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, पतरातू से आप है बेसिल खलको से सिल खलको, माधुरी तू रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, ललित और इनके परिवार के अन्य सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से आप है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हिमालय की गोद में फिल्म से लिया हुआ प्रोग्राम का ये अगला गाना।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में था ये गाना फिल्म धनवान से, और सुनना चाहा था आप सभी ने शिवाजी चौक से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी। और अब सुनवा रहे हैं आपको एक फूल दो माली फिल्म से लिया हुआ ये गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और चेपा कला। बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भारत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिनी, प्रियंका, दीपिका।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम सागर, और सुनना चाहा है आप सभी ने उर्वशी ग्रुप मगनपुर से। आप हैं अमजद अली, अब्बास आलम और रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, जीवनी तिलिया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, और इटखोरी से पंकज, मिनी, स्वाति और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

और अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का अगला गाना। राजकुमार फिल्म का ये गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, और सुनना चाहा है आप सभी ने। पंच मंदिर रोड से आप है नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और समा परवीन आरजू। और सरोज चौक अमरावती से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार नसीम।

0: असली नकली फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आपकी चाहत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात के 8:44 थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 अंग्रेजी समाचार न्यूज एट 9 प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में

0: अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं।

राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 10 बजे हैं।

ये है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का प्रोग्राम रजनीगंधा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था ये गाना गैम्बलर फिल्म से। कार्यक्रम है रजनीगंधा और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सावन को आने दो इस फिल्म से ये गाना सुनिए यशोदास की आवाज में।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था आशा भोसले की आवाज में, और एक बार फिर आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का अगला गाना साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10:30। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 1966 में आई फिल्म साज और आवाज के गीत। सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे जॉय मुखर्जी और सायरा बानो।

साज और आवाज इस फिल्म के गाने आप सुन रहे हैं। ये फिल्म आई थी साल 1966 में। जॉय मुखर्जी और सायरा बानो की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म थी ये। इसी फिल्म के गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अगला गाना।

यह था कार्यक्रम में एक फिल्म से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंक विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत

और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।